मेंटल हेल्थ का टॉपिक है और ये कॉम्प्लेक्स है। ये मैंने पहली मजलिस में बताया था कि हमारा प्रोफेशन ये नहीं है, लेकिन आज के दुनिया में ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स काम कर चुके हैं, उनसे इस्तेफादा करते हुए पेश कर रहे हैं। कुरान हर चीज़ के लिए शिफा है, हर बीमारी के लिए शिफा है। अगर इस कुरान से करीब हो जाए, इंसान को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान जब पढ़ेंगे आप, कई सवालात उभरते हैं आपके सवाल जहनों में, जितना आप कुरान डीप जाएंगे। इसलिए कुरान ये नहीं कहता कि सुपरफिशियल रहो, बल्कि कुरान हुक्म देता है कि अफला या तदब्बरून अल कुरान, तदब्बुर करो, रिसर्च करो। अल मीज़ान में अल्लामा तबाताबाई कहते हैं कि 300 आयत्स, कुरान में कितनी आयतें हैं, कुरान में वो 666 रॉन्ग नंबर है, 6236, 6236 कुरान में 6236 आयतें हैं। इन आयतों में 300 आयतें तदब्बुर, तफक्कुर, तफहम, यानी अजीब व गरीब है कि डीप जाओ और सुपरफिशियल ना रहो, ये तुम में है एबिलिटी, यू कैन डू इट। कुरान इनक्रेज करता है इंसान को कि सिर्फ बाप दादा ने बता दिया या कि माहौल ने बता दिया, उसको नहीं मानो, जो हक है उसको मानो, स्ट्राइव करो। एक दिन तुम हक तक पहुंच जाओगे, तुम्हारी कामयाबी इसी में है। अगर हक तक नहीं पहुंचोगे तो मुमकिन है कि ज़िंदगी गुजर जाए, लेकिन तुम्हारी हकीकत ख़त्म हो जाएगी हक के ना पहुंचने तक। इसीलिए लाजिमी है कि ज़रा सा गौर व फिक्र करें। कुरान ज़र्रा सा गौर करेंगे तो आपके जहनों में कई सवालात उभरेंगे, हमारे जहनों में सवालात उभरेंगे। इन सवालात का सही जवाब अगर कोई दे सकता है तो एक ही घर है, तो गोया कुरान सवाल है, अहले बैत जवाब। अगर आप, इसलिए कि कुरान ने खुद कहा है, सूरह नहल की आयत है, इन्ना अनज़लना इलैकल किताब लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ऐ रसूल आप पर किताब नाजिल करना है। ये पल्ले पढ़ने वाली नहीं है किताब, ये अल्लाह का कलाम है, आसानी से ये समझ में आने वाला नहीं है। तो इसके लिए तुम स्पोक्समैन बनो, यानी तुम मीडिएटर बनो, तुम मुबय्यिन बनो। मुबय्यिन के माने मैनिफेस्टर, कोई आदमी मफहूम को लेकर के ओपन अप करता है। आज अखबार पर बहुत से लोगों ने एक एक एरिया पर PhD किया है, अखबार के अशार पर, अखबार की खुदी वगैरह वगैरह। तो ये सिर्फ एक शायर के अफकार के मरने के बाद लोग उस पर PhD कर रहे हैं। कलाम अल्लाह का आसान काम नहीं है, रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद नतीजे पर पहुँचो। याद रखो कि इसका मैनिफेस्टर जो है एक ही घर है, वो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिम सलाम। सिंपल सी बात है, नमाज की रकातें कुरान में नहीं है। फज्र की 2 रकात, जोहर की 4 रकात, असर की 4 कुरान में मौजूद नहीं है। 5 बार नमाज पढ़ो कुरान में मौजूद नहीं है। कुरान अकीमुस सलात कहता है, सरकार बताते हैं कि नमाज को कैसे कायम किया जाए। तो 2 चीज़ें होंगी, एक थ्योरेटिकल रिलीजन, एक प्रैक्टिकल रिलीजन। थ्योरी कुरान है, फ़िलासफ़ी कुरान है, प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद बारह इमाम, इसीलिए रहबर मुअज़्ज़म की हफ़ज़हुल्लाह की बेहतरीन किताब है, 250 साल इंसान। 250 साल इंसान कैसे हो सकता है कि इंसान 250 साल जिए, यानी 12 इमामों की ज़िंदगी 250 साल की है। ये 12 इमामों की ज़िंदगी को उन्होंने एक जगह जमा किया, गोया इनका कौल एक है, इनका फेल एक है, हालांकि ज़माने अलग अलग हैं। यानी कुरान की अगर हकीकत में मैनिफेस्टेशन चाहते हैं, सरकार इस दुनिया से गए हैं, हकीकत मोहम्मदी आज भी ज़िंदा है। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले। आते हैं मौजू की तरफ। कुरान की ये आयत जिसकी तलावत का हम शरफ हासिल कर रहे हैं, सूरह अनआम 6वां सूरह है, उसकी 82 आयत है। कुरान पढ़िए रोज़ाना, जो है 10 आयतें तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर ज़िंदगी मत शुरू कीजिए। अपने मॉर्निंग को कुरान से शुरू करें, लाइट से शुरू करें, नूर से। अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुख्रिजन्नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, सूरह इब्राहिम की इब्तदाई आयतें। ये कुरान इंसान को अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है। तो अगर हम चाहते हैं मेंटल इलनेस को

दूर करना चाहते हैं, सही राह पे चलना चाहते हैं, तो हम लोग रोजाना सुबह 10 आयतें पढ़े, जरा सा फाउंडर करें, जरा गौर करें, तो आपको एक नई दुनिया नजर आएगी। जिस दुनिया में हम आए ये झूठी दुनिया है, धोखेबाज है, हर मर्तबा हर पहलू में जो सुनते हैं झूठ है, जो देखते हैं झूठ है। इसीलिए लाजमी है कि सच की तरफ इंसान जाए, सच्चाई की तरफ जाए। उसके लिए कुरान कुरान पढ़ें ज़रूर, 10 आयतें तर्जुमे के साथ पढ़ा करें। इस आयत को देखिए कितनी खूबसूरत है जो पढ़ रहा है मुसलसल। अल्लदीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, यानी मोमिनीन बिलीवर्स। कुरान की निगाह में तीन तरह के इंसानी माशरे की तकसीम है, कुरानी तकसीम। सोशल ह्यूमन नॉर्म में तीन तरह के लोग हैं कुरान की निगाह में। एक वो लोग हैं जो बिलीवर्स हैं, जिन्होंने ईमान ला लिया है, ये बिलीवर्स हैं। उसके मुकाबिल में काफिर हैं, यानी नॉन बिलीवर्स। और मैंने बताया था हम लोगों के जहनों में काफिर जो है जो इस्लाम को ना माने, ऐसा नहीं है। जो इनकार हकायक़ इलाहिया करे वो काफिर है। हत्ता जब जाएंगे हिंदुइज़्म पे भी जाएंगे, अगर आप, मैंने पहले ही दिन कहा था, अगर आप गीता पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, तौहीद की बड़ी निशानियों से मौजूद हैं। ज़ालिमीन के ख़िलाफ़ लड़ने का हुक्म है, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने का, इसी इसमें, मगर हम उन लोग तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। मुमकिन है कि किसी नबी ने यह बयान किया हो बाद में, जिस तरह से मुसलमानों ने इस्लाम को बिगाड़ दिया, उसी तरह इन्होंने भी दीन को बिगाड़ दिया हो। तो इसीलिए ये आसान काम नहीं है लफ्ज़ काफिर को फिट करना, मुझे उसमें जाना नहीं है, ये बहुत ही फिक्री ज़बान है, तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो कुरान मजीद एक मोमिनीन की ग्रुप को बताता है, उसके मुकाबिल में कौन है, काफिर है। काफिर कौन, अंदर तलहुम अम लम तुंदिर हूँ ला युमिनू, अगर उनको डराएं या न डराएं वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। उसके बाद तीसरी शक्ल है, वह है मुनाफिक की। मैं जवानों को समझाने के लिए उमन कहता हूँ, एक है वाइट एरिया, एक है ब्लैक एरिया। ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं वाइट एरिया को, ब्लैक एरिया को भी ऐसे ही आसानी से समझा जाता है, लेकिन मुश्किल हो जाता है जब ग्रे एरिया में जाता है इंसान। जब ग्रे एरिया होता है, कुरान 13 आयतें, जैसे सूरह बकरा में 5 आयतें मोमिनीन के लिए हैं, 2 आयतें काफिरों के लिए हैं, ये ब्लैक एरिया है। 13 आयतें मुसलसल समझाई जा रही हैं मुनाफिक कौन है, ये मुनाफिकत की तारीफ क्या है, उनकी इब्तिदा क्या है, 13 आयतें। उसके बाद सूरह भी नाजिल हो गया। अभी हाल में मिस्र का एक स्कॉलर बहुत ही अच्छा जुमला कहा है, किताब लिखी है उसने, सरकार के ज़माने में इतने मुनाफिक का तस्करा कुरान में है, ये सब कहाँ चले गए, सब मोमिन हो गए। जब इतने मुनाफिक थे तो वो कौन है वो मुनाफिक, अगर देखना है जो ईमान के मुकाबिल में आ जाए, या अली हुब्बो का ईमान बोगदो का कुफ्र व निफाक, या अली तेरी मोहब्बत ईमान है, तेरी दुश्मनी कुफ्र भी है मुनाफिकत। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले। अल्लदीना आमनु, जो लोग ईमान लाए, ये लोग, ये जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं कुरान की निगाह में, और वो लोग मुमकिन हैं कि ईमान लाने के बाद भी खुदा ना खासा गुनाहों में मुलविस हो जाएं। अल्लदीना आमनु वलम यलबसु ईमानहुम बिज़ुल्मिन, अगर उनका ईमान गुनाहों से मुलबिस नहीं हुआ, यानी ईमान लाने के बाद उन्होंने गुनाह नहीं किया, तो उनके लिए क्या है, उलाइका लहुमुल अमन, यानी पीस ऑफ माइंड, जिसको कहते हैं मेंटल हेल्थ को दूर करने का वाहिद तरीका यह है ईमान के बाद गुनाहों से बचना। गुनाहों से अगर बच गए तो इसके माने उनके पास सुकून ही से, उलाइका लहुमुल अमन, फॉर देम देयर इज अ पीस। अब हो गया, अब उसके बाद दूसरा जुमला है, वहम मुहतदून, ये इशारा है, वो एक ही खानदान है जिन्होंने गुनाह भी नहीं किया, वो मुहतदून, वो खानदान मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक कदम मैं तीसरी मजलिस में एक जगह छोड़ा था, वहां पर मैं ले जाना चाहता हूँ। इंसान अपने और अल्लाह के दरमियान राबते के लिए स्ट्राइव करे, जितना वो रास्ते पर बाकी रहेगा वो अमनियत में रहेगा। इसीलिए बार बार हमको ये सूरा रिपीट करना है, एहदना सिरातल मुस्तकीम, एहदना सिरातल मुस्तकीम, एहदना। क्यों भाई, अभी 2 घंटे नहीं हुए, 3 घंटे नहीं हुए, 4 घंटे नहीं हुए, सुबह पढ़ा था, जोहर

आज कुछ भी नहीं है, आज जो है आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिखना है और तुम्हारा डेस्टिनेशन लिखना है, और जैसे ही डाल दिया तो आप जीपीएस को बताता है राइट जाओ लेफ्ट जाओ, रॉन्ग हो गए तो यू हैव टू टर्न मोर, अब जाओ तीन चार चक्कर फिर आओ, फिर वापस आओगे अपने रास्ते में। एक जुमला कहता हूँ, एक गलत टर्न लोगे तो तीन चार सही टर्न लेने के बाद पहुंचोगे। जिंदगी भी ऐसी है, अगर एक गलत टर्न लिया आपको दो तीन टर्न सही लेने के बाद फिर रास्ते पे आएंगे। दीन भी ऐसा है, ये गलत टर्न लिया एक अली से हटे, सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद अज्जल फरज। बहुत ही गौर कीजिए, इंसान एबिलिटीज को जानना चाहिए, उसके वीकनेसेस को जानना चाहिए, हर्डल्स उसके दरमियान जो और पहुंचने के दरमियान बीच में जो हर्डल्स हैं, सबसे पहला हर्डल है नफ्स। मैंने इस साल कोयत में रमदान फर्स्ट 10 डेज में पढ़ी है मजालिस हैं मारिफत-ए-नफ्स। मारिफत-ए-नफ्स इज़ नॉट ए ईजी थिंग, इसे फ़िलासफ़ी बहुत डीप जाना है। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहि अफ़ज़लुस सलातु वस्सलाम ने अफ़ज़लुल मारिफा मारिफत-ए-नफ्स, अफ़ज़लुल मारिफा यानी नॉलेज को अगर देखें हम, बेस्ट ऑफ द नॉलेज क्या है, नोइंग द सेल्फ। अपने आप को जान गए तो बहुत बड़ा इल्म है, अपने आप का जानना आसान नहीं है। सूरह मायदा की 105वीं आयत है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू अलैकुम अनफुसकुम, बहुत खूबसूरत है कुरान। ये अलैकुम समझाने के लिए मैंने कभी मिसाल दी थी, फिर भी अच्छा है, बाज़ वक़्त ज़रा सा बहाल हो जाए आप लोग। आजकल की इस दुनिया में नौजवान बच्चे बहुत ही कंसाइज गुफ्तगू करने लगे हैं। पहले क्या होता था, जुमले में लिखते थे, आजकल जुमले नहीं लिख रहे हैं। स्टार्ट किया एस ए, एस ए क्या हो गया भाई, सलामुअलैकुम, अब एस ए जो है सिमट गया पूरा, सलामुअलैकुम एस ए ठीक है। बात करते हुए W8 क्या, W8 क्या, वेट वेट वेट जरा सा जी, और कोई प्रॉब्लम, NP नो प्रॉब्लम जी, आखिर में एंड जब करते हैं TC, TC क्या है, टेक केयर। अल्लाह भी कह रहा है तुम बहुत अहम हो, टेक केयर। अलैकुम अनफुसकुम, तुम्हारा नफ्स बहुत अहम है, टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ, कहीं आत्म कहीं तुमको दुनिया ने धोखा ना दे, TC टेक केयर ऑफ। तो खुदा ने यह बताया कि जब इंसान की अक्ल बढ़ती है तो जुमले लफ्जों में नहीं हुरूफ में तब्दील हो जाते हैं। अब समझ में आया, अलिफ लाम मीम, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यासीन, काफा, या इंसाद, ये सब क्या है, ये कम्युनिकेशन का एक तरीका है, इसीलिए इनको कहते हैं। इनकी मानों में मत जाओ, या अल्लाह जानता है या सरकार जानते हैं, इसके कोई माने जानता है, जिस तरह से कम्युनिकेशन में। तो इंसान का नफ्स वेरी इंपॉर्टेंट, अल्लाह कह रहा है कि बहुत कीमती चीज दे रहा हूँ, इसका तुम ख्याल रखो। अलैकुम अनफुसकुम, तुम्हारा नफ्स बहुत कीमती है, इसका तुम ख्याल रखो। देखिए, बहुत सोचा मैं कि बहुत, किसी ने कहा मौलाना ये कोई ऐसा मिसाल दीजिए हम आसानी से समझ सके, ये नफ्स है क्या, चक्कर क्या है। और एक साहब ने तो, एक मम्मी ने कहा, अभी तक कोई मौले में दम नहीं हुआ कि नफ्स को समझ, हकीकत में बहुत मुश्किल है भाई, ये फलसफियाना गुफ्तगु है, आसानी से नफ्स समझ में आता नहीं है। एक मिसाल देता हूँ, शायद हमारा जहन करीब हो जाए हकीकत इंसानी से। है मेरे साथ आप लोग, एक सलवात पढ़े मोहम्मद अल्लाह। एक बादशाहत का तसव्वुर कीजिए, बादशाहत यानी किंगडम, ठीक है। एक किंगडम में क्या है, किंग होता है और एक वजीर होता है। वजीर कौन है, क्या कहते हैं इंग्लिश में, वजीर को एडवाइजर, या एक मिनिस्टर, एक हो गया किंग, एक हो गया मिनिस्टर, और उसके ऑर्गन्स ऑफ एक्शन तो हुकूमत पूरी। जिस तीन चीजें समझिए, एक रूह, दूसरे नफ्स, तीसरे जिस्म। अगर इसको समझना है, रूह, नफ्स और जिस्म। रूह क्या है, बादशाह है। क्यों बादशाह है, अल्लाह ने कहा ये मेरा पावर है, अल्लाह ने कहा कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, यदा नफख तो फी है मेन रूही, कोई और नहीं है मैं। तो मालूम हर इंडिविजुअल हम

सब में एक पावर है, वो पावर किसका है? अल्लाह का है। इतना बड़ा पावर रखने के बाद फिर मैं मेंटल हेल्थ में परेशान क्यों हूँ? तो मालूम है बीच में हर्डल्स कुछ आ गए हैं जो मिसिंग लिंक हो रही है, उसका समझना जरूरी है। गौर कीजिए, वो किंगडम हमारी किसकी है? अल्लाह की है। रूह किंग है, नफ्स क्या है? वजीर है उस किंग का। व नफ्स वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा वतक्वाहा कद अफलहा मन ज़क्काहा वकद खाब मन दस्साहा कद्दबत थमूद बितगवाहा इज़ इन्बअथ अशकाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तल्लाह वसुक़याहा। ये मिसाल कुरान के जरिए से समझा था खुदा कि इंसान के अंदर हमने एक नफ्स रखा है, उसके अंदर एक चीज़ डाल दी है, क्या है? फअल्हमहा फुजूर वो तकवा। बताया है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। एक कम्युनिस्ट को लीजिए, एथिस्ट को लीजिए, उसे कहिए झूठ, कहता है रॉन्ग अच्छी चीज नहीं है, चोरी का अच्छी चीज नहीं। अरे भाई तुम रिलीजन को बिलीव नहीं करते यार, गॉड को बिलीव नहीं करते। इसका ताल्लुक रिलीजन से नहीं है, इसका ताल्लुक रिलीजन से नहीं है, मेरे अंदर ये गूंधी हुई चीज है, इसमें मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। झूठ झूठ है, सच्चाई सच्चाई है। गैर मजहब भी जानता है जो मजहब नहीं रखने वाला, बुराइयां बुराइयां हैं, अच्छाइयां अच्छाइयां। इसीलिए आयत कर रही है व शम्स व दुहाहा के बाद 11 कसम खाने के बाद व नफ्सम व मा सवाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा। नफ्स मुसवा की कसम, इसको हमने इल्हाम कर दिया है, वी गाइडेड। किसको गाइड कर दिया? इस इंसान को। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, बुरा क्या है अच्छा क्या है, हमने बता दिया। अब तुम्हारे हाथ में ये नफ्स मैंने दिया है, इसको अच्छा बना लो या बुरा बना लो। अल्लाह ने किंगडम हवाले किया किसके? वजीर के। ये वजीर इसको बर्बाद कर दे या अच्छा कर दे, इसके हाथ में है। तवज्जो। अब आइए, जिस्म क्या है? ऑर्गन्स ऑफ दी हुकूमत। ये जिस्म हाथ पैर किसके हुक्म से चलते हैं? नफ्स के हुक्म से। ये नफ्स कहता है इधर देखो उधर देखो। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। आपने सूरह है हमारे पास 31वां सूरह है, किसके नाम से? लुकमान के नाम से। लुकमान पैगंबर नहीं थे, कुरान ने उनको हकीम कहा, ए वाइज मैन। लुकमान कौन थे? ए वाइज मैन, अच्छा हकीम था। और इसी आयत में कुरान ने सूरह लुकमान में उनको हकीम कहा। उनसे पूछा, मालूम है आप कहां से थे लुकमान? ही वॉज फ्रॉम अफ्रीका। तो इसके माने के कलर मालूम हो गया, लेकिन इतना विजडम उनके पास कहां से आया? एक चीज मैं हमेशा से कहता हूं बहुत ही खूबसूरत है, वो ये है कि एबिलिटी किसी के पास है तो रिकग्नाइज करो। अगर कौम में किसी के पास एबिलिटी है तो उसको रिकग्नाइज करो, खा वो काला हो या गोरा हो या अमीर हो या गरीब। सलावत पढ़िए मोहम्मद। लुकमान से पूछा, फ्रॉम वेयर यू लर्न दिस हिकमत, कहां से तुम्हें ये हिकमत आ गई? लुकमान से किसी ने पूछा, ये तुम्हारे पास विजडम जो आया है ये कहां से है? नौजवानों बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही खूबसूरत मेरी बहनों मेरे बेटों, बहुत ही अहम चीज है। उन्होंने कहा कुए मुद्रका कुए मुजरिया। इंसान की बॉडी में दो चीजें हैं, एक कुवत मुद्रका है यानी रिसेप्टिव सेल्स हैं देखने की, 5 कुवत सेंसस, और एक्टिंग की कुवत है। एक्ट क्या है? हाथ पैर देखना बोलना, ये तमाम एक्ट, रिसेप्टर्स और एक्टर्स ये इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद हैं। पूछा लुकमान से कि तुम्हारे पास विजडम कहाँ से आई, हिकमत कहाँ से आई? वो लुकमान ने कहा मैंने रिसेप्टर सेल्स को कंट्रोल किया और मुजरिया को वहीं चलाया जहाँ सही हो। तवज्जो, यानी मैंने आँखों को कंट्रोल किया, कानों को कंट्रोल किया, जबान को कंट्रोल किया, हर चीज़ नहीं देखी वही देखा जो देखना चाहिए, हर चीज़ नहीं सुनी वही सुना जो सुनना चाहिए, हर चीज़ बोली नहीं वही बोली जो बोलना चाहिए, और एक्ट भी वही किया जो अक्ल मेरी कह रही है। खुदा ने मुझे हिकमत दिलाई। अगर इंसान अपने हवास को अपने रिसेप्टर सेल को कंट्रोल करे तो उसमें एक विजडम अल्लाह ताला देगा जिसके जरिए से वो दुनिया में बहुत ज्यादा काम कर सकेगा। सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।

डोंट लूज मी. तो मिसाल समझ में आ गई ना. जेस एक है, तीन चीजें हैं, ये ट्रायंगल है. रूफ टॉप ऑफ द लिस्ट, राइट में क्या है नफ्स, और लेफ्ट में जिस्म. ये तीनों एक दूसरे से मुत्तसिल हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुदा नहीं हो सकते. रूह, नफ्स और जिस्म. अगर रूह कवी हो गई तो नफ्स में भी कुव्वत आ गई. नफ्स अगर कवी हो गया उसके ऑर्गन्स भी उसी के मुताबिक चलेंगे जिस तरह से चलना चाहिए अल्लाह के हुक्म से. अल्लाह कह रहा है कि देखो भाई, तुम सीधी सीधी बात है, अगर मेरी ग्रेविटी में आ जाओगे तो तुम में कुव्वत वो आ जाएगी इलाही. मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहि अफजलु सलातु व सलाम, डाइटिशियन कहते हैं कि देखिए भाई, ये खाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए एनर्जी के लिए ज़रूरत है, अगर तुम्हारी एज है, इतनी हाइट है, तो ये इतना खाओगे तो तुम ज़रा सा सर्वाइव होगे. एनर्जी को बाकायदा कैलोरीज को गिन के खिलाया जा सकता है. आज तो बहुत ही तरक्की कर गया इस ज़माने में. ज़रा सा लकीर के फ़कीर रहना अकलमंदी नहीं है. सेहत से रहिए, अच्छी सेहत बनाइए, तबीयत को अच्छी ग़िज़ा खाइए, अच्छी चीज़ देखिए. ये जब डाइटिशियन कहता है कि इतना खाओगे तो ये एनर्जी आएगी, मैं जब तारीख पढ़ता हूँ मौला अमीर मोमिनीन की, वो कौन है जो सूखी रोटी को घुटने से तोड़ रहा है? ये कहाँ से एनर्जी आ गई कि खैबर के दरवाजे, खैबर के दरवाजे को दो उंगलियों से उखाड़ दिया? फ्रॉम वेयर? मौला ने कहा, ये कला तो बाबा खैबर इन ला बेकुवत इंसानिया बल बेकुवत रब्बानिया, ये मेरी कुव्वत नहीं है अल्लाह की. सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद. अल्लाह ताला सलामत रखे आपको. कोशिश ये करें हम लोग, ये अगर खुदा तौफीक दे, शब जुम्मा है, कि हमारी एनर्जियां अगर ग्रेविटी ऑफ रूहानियत की तरफ चले जाएं तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हैं. तो हम लोग जो है कभी ऐसा एकदम ही नहीं कर सकते जो इस नफ्स के, इस रूह के खिलाफ हो. तो पहला क्या सबक देता है खुदा? खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास एक अमानत दे रहा हूँ. बहुत अच्छी गौर कीजिए, मेंटल हेल्थ में बहुत अहम चीज़ है. आई एम गिविंग यू ए ट्रस्ट इन अरदना अल अमानत. सूरह अहज़ाब 33 सूरह, जिसमें आयत अथीर भी है, उसमें 73 आयत हैं. 72nd आयत यह है, इन अरदना अल अमानत अल समावात वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनाहा व अशफक़न मिनहा फहमलहा अल इंसान इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला. बहुत ही खूबसूरत है कुरान. कुरान कह रहा है कि हमने ट्रस्ट दिया, किसके हाथ में? इंसानों के हाथ में एक ट्रस्ट दिया, एक अमानत दी. अरे भाई, मैं आपके हाथ में एक अमानत दे रहा हूँ, ये रखिए अपने पास, 3 महीने बाद ले लूँगा. तवज्जो में, मैंने अमानत दी आपके हाथ में, आपने कहा मेरे पास मौलाना ने 1,00,000 रुपये दिए हैं, वही 1,00,000 रुपये में से वापस रख दूंगा मैं, 10,000-15,000 खर्च करूंगा, फिर वापस रख दूंगा, 1,00,000 वापस दूंगा. ये अमानत में पूरा खयानत है. हालांकि आप पूरा 1,00,000 वापस दे रहे हैं मगर उसमें से निकाल नहीं सकते. अमानत के माने जैसा है वैसा वापस करना है. अल्लाह अकबर. कुरान ये कह रहा है, ए इंसान, तुझको मैंने नफ्स अमानत दी है, इस अमानत को मेरे हवाले करो, जैसे है वैसे हवाले करो. मैंने पाक दिया है, पाक हवाले करो, कोई नहीं कर सका सिवाय घराने अहले बैत के. इन्होंने पाक लिया, पाक दिया. जब इस नफ्स को पाक दिया और पाक लिया तो ये नफ्स उनका नहीं रहा, ऐनुल्लाह हो गए, उदनुल्लाह हो गए, जम्बुल्लाह हो गए, मशीह. बात समझ में आ गई? तो कोशिश ये करें कभी भी ये मैं हूँ, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, ये इस्लामिक परस्पेक्टिव नहीं है. वॉट एवर आई वॉन्ट यू डोंट हैव. जैसे ही करोगे तुम करप्शन में आ जाओगे, करप्शन में आ जाओगे, फिर उसके बाद मुमकिन है कि ड्रास्टिक एफर्ट ले करके तुम ऐसे काम करो जो तुम्हारे लिए हक नहीं है, तुम्हारा हक बनता ही नहीं है. क्यों हराम है कोई काम? सुसाइड हराम है. क्यों हराम है? इसलिए कि तुम्हारा नफ्स नहीं है, तुम्हारी अमानत नहीं है. अगर इंसान ऐसे बहुत ही सेंसेशनल मौके पर आए तो क्या करना चाहिए? कुरान कहता है, हदीस ये कहती है, फौरन ऐसे मौके आए, फौरन कहो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह. खुदा न खासा बहुत बड़ा गुनाह सामने आ रहा है, फौरन कहो ला हौला वला कुव्वत. क्या है ला हौला? देयर इज नो

और हलाल कमाई नहीं होगी तो जनरेशन पर उसका इम्पैक्ट होगा। अगर रोटी हलाल नहीं होगी जनरेशन पर इम्पैक्ट होगा। इसीलिए अलकादोल आयाले कोशिश करने वाला सबसे बड़ा मुजाहिद वो है जो हलाल रोटी कमाए। सबसे ज्यादा स्ट्राइव हार्ड करने वाला कौन है? जो हलाल रोटी कमाए। हलाल रोटी से क्या होगा? सबसे पहला पीसफुल माइंड, कभी उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं रहेगा, एतमान रहेगा, हमेशा सुकून रहेगा, इसलिए कि हलाल खा रहा है। जैसे ही हराम लुकमा गया उसके असरात आंखों पे भी होंगे, उसके असरात कानों पे भी होंगे, उसके असरात उसके जिस्म पर भी होंगे, एक्शन पे होंगे। कोशिश ये करें कि कुछ ना हो हलाल खाएं। जल्दी जंप करके देखा देखी मुझने उसने वो किया, मुझे ये करना, उसने ये किया। आज करप्शन इंडिया में क्यों बढ़ रहा है? एक ऑफिसर है जिसकी तनख्वाह जो है 30,000-40,000 है, लेकिन उसने ले लिया है बेहतरीन गाड़ी बेंज, और मंथली देना है उसको। क्या करना है? जब तक ये फाइल के लिए इतना पैसा नहीं दोगे उस वक्त तक ये फाइल इधर से उधर नहीं जाएगी। करप्शन क्यों बढ़ा? इसलिए कि आपके ख्वाहिशात बढ़ गए हैं, करप्शन बढ़ रहा है। अगर ख्वाहिशात में रुकावट आ जाएगी तो करप्शन कभी होने वाला नहीं है। तो ये राह है, दीन के अलावा कोई रास्ता नहीं। सलवात पढ़ो। एक रिवायत देखिए, बहुत ही अजीब गरीब है कि मौला अपनी खिलाफत के दौरान अल्लाह अली, कभी कभी वाकयात बयान करते हुए लरस जाते हैं कि हम लोग हम कहाँ हैं क्या हैं। कोफे में खिलाफत ज़ाहरी के दौरान मौला खुतबा दे रहे हैं और हाथ को ज़रा ज़्यादा हिला रहे हैं। किसी ने पूछा कि ये मौला अली आज मौला के पास एक जोड़ा है, अभी धो के पहना है, वो हिला हिला करके सुखा रहे हैं। अली रावी रिपोर्टर कहता है कि जोहर की नमाज मौला के पीछे पड़ा, मौला ने कहा वो थैली लाओ थैली लाओ। मैं समझा खलीफा वक्त है, थैली मंगाया है तो उसमें अशरफियाँ होंगे, सोने के कॉइंस होंगे। थैली आए वो सील थी, उस पर सील लगी, मोहर लगी। और रावी रावी के मैंने रिपोर्टर सारा क्यूरियस हो जाता, समझा कि यकीनन इसमें पैसा होगा। मौला ने उसको तोड़ा, अंदर से सूखी रोटी। ही कुड नॉट रिजिस्ट, ये संभाल नहीं सका। पूछा मौला ये सूखी रोटी के लिए सील करने की क्या जरूरत है? मौला ने कहा मैं नहीं चाहता था मेरी मोहब्बत में मेरे बच्चे इस पे तेल लगा दें, यमन में कोई यतीम भूखा रहे। यह है दीन, यह है दीनदारी। कोफे में बड़ा हुआ हाकिम, हाकिम वक्त यमन के यतीमों का ख्याल कर रहा है। आज समझे कि यतीम यमन में जो असरात हैं उसकी वजाहत का सबसे बड़ा हिस्सा मौला अली से मोहब्बत है। अजीब व गरीब है कि जो यतीमों का ख्याल रखे उन 21 रमादान बल्कि 19 रमादान सन 40 हिजरी को जब मौला जाने लगे, मुर्गाबियाँ आकर के आपके दामन को पकड़ने लगी। मौला पलटे, जैनब जैनब ख्याल रहे, उम्मे कुछ ख्याल रहे, ये बेजबान है, अगर इनको खाना ना खिला सको, दाना ना दे सको तो इनको आज़ाद कर दो। जो मुर्गाबियों के लिए, जो यतीमों के लिए ख्याल करे और उसके बच्चे अला तश की आवाज़ बुलंद करें। अजीब दुनिया है कि ये इस दुनिया को समझना बहुत ही मुश्किल मरहला है कि जिस घराने ने इतना इतना ख्याल किया, इतना ध्यान दिया कि किसी यतीम का माल ना ख़त्म किया जाए, मतीम को कभी तकलीफ होने ना पाए, उसके बच्चे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं अल आताश। गौर करें बहुत अच्छी तरह से।
एक जुमला इस पर यह भी कह दूंगा, जवान आप लोग उस पर बहुत गौर करें, जब बच्चों पे जुल्म होता है बच्चे उमूमन पूछते हैं कि क्या भाई क्या किया हम

बताओ क्या किया। करबला में खैमे जले, सकीना के तमाचे लगे। एक दो मरतबा नहीं, तमाचे लग रहे हैं मुसलसल। अरे भाई होना चाहिए चार सलाह, बच्ची को क्या करना चाहिए पूछना चाहिए, बताओ भी क्या करना है मुझे, मुझसे क्या चाहते हो ये बता दो ताकि फिर ये ना काम करूं। मगर नहीं, जनाब सकीना ने नहीं पूछा क्या बताया, यानी जो बाबा की ना है वो भी हमारी ना है। बाबा ने कहा था यजीद की बैत नहीं करेंगे, तुम तमाचे मार लो, तुम गूंदे खींच लो, तुम जख्मी कर दो, हमारी ना भी उसी तरह की ना है जिस तरह की हमारे बाबा की ना है। ये है वो मेयार इंसानी, जहां पर इंसान जब कभी परेशान हो जाता है तो ऐसे ऐसे इकदाम करने लगता है। लेकिन अहले बैत तारीख में है कि जनाब ज़ैनब के लिए जब दरबार यजीद, अल्लाह अकबर, मैं कह गया जुमला समझने की कोशिश करें, कहते हैं कि एक खतीब खिताबत कर रहा था, एक मर्जा बैठे हुए थे बड़े आलिम, जैसे ही उसने कहा ज़ैनब और दरबार यजीद, अमामा फेंका, अब आगे मत बढ़, इससे ज्यादा और मसाइब की जरूरत नहीं है, कहाँ ज़ैनब है, कहाँ यजीद है, कहाँ यजीद का दरबार है, इससे ज्यादा कोशिश कीजिए, नए मसाइब की तलाश मत कीजिए, एहसास कीजिए तो बात समझ में आ जाएगी। दरबार यजीद है, जनाब ज़ैनब ने जुमला कहा है जिस तरह से कुरान मजीद में है कि जैसे ही हजरत ईसा की विलादत हुई तो जनाब मरियम ने विलादत से पहले कहा काश मैं मर जाती ये ना होता, यहाँ रिवायतों में है कि काश मैं मर जाती या दरबार, यहाँ जनाब ज़ैनब इन मसाइब तक पहुँचने के उसके बावजूद भी ज़ैनब ने न सिर्फ ये कहा कि मर जाती तो बेहतर था, बल्कि यजीद के सामने डट करके कहा यजीद किद कैदक सायक जोहद जोहदक वल्लाही ला तमहु दिक्रना, ए यजीद जितनी कोशिश करना कर ले, जितनी कोशिश करना कर ले, जितना पैसा खर्च करना कर ले, याद रख ले तू हमारे जिक्र को कभी ख़त्म नहीं कर सकता। आज दुनिया में देखते हैं जिस तरह से अगर सुबह की अदान न्यूजीलैंड में हो रही है तो मगरिब की नमाज शायद आपके वेस्ट में हो रही है, हर लम्हा ग्लोब फिर रहा है, हर लम्हा अल्लाहु अकबर हो रही है, इधर मुहर्रम आया हर लम्हा ग्लोब फिर रहा है, हर लम्हा या हुसैन की याद आ रही है। जनाब ज़ैनब उसी की तरफ इशारा कर रही हैं, तुम जो चाहे कर लो मगर कभी हमारा जिक्र तुम ख़त्म नहीं कर सकते। सैयद सज्जाद ने दरबार यजीद में कहा यजीद इतनी इजाज़त है कि तुम्हारे इस लकड़ियों के टुकड़ों पर जाकर कुछ कहूँ। ये अजीब व गरीब जुमला है, इमाम ने ये नहीं कहा ये मेंबर है बल्कि कहा ये लकड़ियों के टुकड़े हैं, यानी जहाँ हक की बात ना हो, जहाँ हक ना बोला जाए वो मेंबर नहीं है, लकड़ी के टुकड़े हैं। कहते हैं यजीद ने कहा ना मैं इजाज़त नहीं देता कि तुम बोलो, जानता था कि ये घराना जब बोलता है तो इनकी ज़बान ज़ुल्फ़िकार की तरह चलती है, इनकलाब आ सकता है, कहा ना मैं इजाज़त नहीं दूंगा। 700-800 VVIP यानी बहुत सफरात है, बहुत मशहूर लोग बैठे हुए, 700 कुर्सी नशीन या 800 कुर्सी नशीन। इमाम ने एक निगाह दौड़ाई, गोया ये पहुंचा रहे हैं आज की ज़बान में, साइंटिफिक ज़बान में कहते हैं टेलीपैथी, मौला पूछ रहे हों जिसके हाथों में हथकड़ियाँ हैं पाँव में बेड़ियाँ हैं, वो बोलना चाहता है और बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तुम लोग आज़ाद बैठे हुए पूछते क्यों नहीं हुई इससे। चुनांचे उन्होंने पुकार कर कहा यजीद ये तेरा कैदी है, ये तुम्हारे हाथों में कैदी है, ये बोलना चाहता है इसको इजाज़त दे दो। इतना प्रेशर बढ़ा, यजीद ने कहा तुम्हें इजाज़त है तो मुझे जुमला सुनिए, रोने के लिए काफ़ी है, पहला जाकिर है जो इस आलम में जा रहा है जिसके हाथों में हाथ कड़ी जिसके पाँव में बेड़ियां हैं, मेंबर पर गए मौलाना, मन आरफा नहीं फकत आरफा अमन लम यारिफी अना अरफ हो अनबनो मक्कतवल मोना अनबनो जमजम व सफ़ा। अजीब गरीब तारुफ है इमाम सज्जाद का, मैं मक्के का बेटा हूँ, मैं जमजम का बेटा हूँ, मैं मीना का बेटा हूँ, यानी मक्का एक जगह का नाम नहीं है, इब्राहिम की बुनियाद का नाम है, मीना एक जगह का नाम नहीं है, इस्माइल का नाम है, यानी मैं इब्राहिम का बेटा हूँ, मैं इस्माइल का बेटा हूँ। उसके बाद कहा मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का लाडला हूँ, अनबनो मोहम्मद अनिल मुस्तफा अनबनो अली अनिल मुर्तदा।

0: ने अपने तलवारों की नया में तोड़ दी, अपने सरों के बाल मुंडवा कर गंजे हो गए, उसने शहादत किया, एहराम पहने और कब्र हुसैन के गिर्द तवाफ किया। उसके बाद एक पुख्ता अज़्म के साथ ऐनुल वर्दा की जानिब निकल पड़े।
1: खुदा उन लोगों की मगफिरत करे, अच्छे लोग थे बेचारे।
2: अगर वो लोग जीत गए तो
1: तुम में लोगों की पहचान नहीं है इब्राहिम, तुम में लोगों की पहचान नहीं है इब्राहिम। अगर इनके होलियों को खूब गौर से देखते तो जरूर समझ जाते कि तवाबीन सालों पहले मर चुके हैं और अभी कब्रों से दोबारा उठाए गए हैं, ताकि महशर में हुसैन की मदद न करने के जुर्म में सजा पाए।
2: तुम मुठी बख्यालात के कैदी बन गए हो बिन यजीद, उस दिन से डरो कि तवाबीन ऐनुल वर्दा के फाते बन जाएं। और जब वो दिन आएगा तो इराक में जुबैरियों की मौत का दिन होगा।
1: तुम किस बात से खौफजदा हो इब्राहिम? हम तवाबीन के दोस्त हैं, ना के दुश्मन।
2: तवाबीन समझ गए हैं कि तुम मरवानियों के मुकाबले पर उनके जरिए एक गोश्त वाली ढाल बनाना चाहते हो। हमें तवाबीन के काम में दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। कूफे की जानिब इसलिए भेजे गए हैं ताकि मुख्तार का शर खत्म करें।
1: हर काम अपने वक्त पर होता है इब्राहिम, जल्दी मत करो, सब बारी बारी। तुम दुआ करो कि मुख्तार अपने इस अकीदे पर रहे और इसे ना बदले और तवाबीन की मदद के लिए चला जाए।
2: तुम मुख्तार को कैद क्यों नहीं कर लेते उससे पहले कि उसके डर से दुआएं मांगनी पड़े?
1: मुख्तार को ताकत से मगलूब नहीं किया जा सकता,
3: मुख्तार को सियासत से जाल में फंसाना होगा।

0: हमें गलत खबर मिली थी। शामियों का लश्कर अभी तक ऐनुल वर्दा तक नहीं पहुंचा है। ऐनुल वर्दा से जासूस भेजे वो लोग, एक दिन और एक रात तोड़े मगर शामियों के कोई आसार नहीं मिले।
1: हो सकता है कि ये भी जुबैरियों के झूठ और फरेबों में से हो, जो कि ये चाहते थे कि हमें जल्द अज जल्द उन मरवानियों के पास भेज दें। इंशाल्लाह अगर इस जंग में जीत गए तो आले जुबैर को इराक से निकाल फेंकेंगे। ये कौन सी बस्ती है मुसैब?
0: करकीसिया।
1: हम करकीसिया में पड़ाव डालेंगे ताकि कुछ देर आराम कर ले।
0: शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं।
1: वो क्यों?
0: उन्हें हमारी खबर मिली है, उन्हें डर है कि उनसे ना लड़े।
2: सैयद, हाकिम में करकीसिया तो तुम्हारा जानने वाला है, तो उसने आखिर ऐसा क्यों सोचा?
0: क्या काम है? यकीनन तवाबीन के इरादे से वाकिफ नहीं है।
1: मुसैब, अपने जानने वाले के पास जाओ और कहो कि हमारा इरादा शामी लश्कर से लड़ना है। कहो कि एक बाजार लगा दें ताकि हम लश्कर वालों की जरूरत का सामान खरीदें।
0: जी शेख।
1: रुफा, ये पैगाम अबू इसहाक के लिए भेज दो।

0: ए अमीर, तवाबीन अहलुलबदा के रास्ते में हैं। उनकी तादाद तकरीबन 4,000 अफराद की है। उनका सालार एक बूढ़ा शख्स है जिसका नाम है सुलेमान सुरद खजाई।
1: ज्यादा है, बहुत ज्यादा है।
2: तुम्हारा लश्कर तवाबीन से 3 गुना ज्यादा है।
1: अपने फूहड़ मगज को इस्तेमाल करो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हर तवाब 10 शामी के बराबर है। उनमें से बास तो अकेले ही एक लश्कर पर भारी हैं। उसकी मिसाल मुख्तार सकफी।
0: मुख्तार तवाबीन के साथ नहीं आया हमीद।
1: नहीं आया? पक्की बात है? मुख्तार तो कातलाने हुसैन के खून के प्यासों में से एक है।
0: मैंने सुना है कि वो सुलेमान सूद खुजाई से जंग की नौयत के हवाले से इख्तलाफ रखता था।
1: कैसा इख्तलाफ?
0: तवाबीन का इरादा कातलाने हुसैन से लड़ना है। वो दुनिया और हुकूमत की तरफ कोई रगबत नहीं रखते, जबकि मुख्तार अलवियों की हुकूमत दोबारा बर्पा करना चाहता है।
1: ताज्जुब है? तो फिर हमारा असल रकीब मैदान में नहीं आया? सुना तुमने माकल? मुख्तार नहीं आया। मुख्तार नहीं आया। ये कज़्ज़ाब सक़फ़ी पता नहीं कब तक हमारे ख्वाबों की वहशत बना रहेगा। शुराबील इब्न ज़ीकला, हुसैन इब्न नुमैर को पैगाम दो कि जल्द से जल्द एनुलबर्दा पहुंचे। तुमने तवाबीन को कहां देखा?
0: अर्किसिया में पड़ाव डाला हुआ था।
1: मैं चाहता हूं शुराबील और हुसैन तवाबीन से पहले एनुलबर्दा पहुंच जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी आराइश लश्कर कर सके। हुसैन बिन नुमैर को लिखो कि तवाबीन शियों के लश्कर का मुकदमा है। इसमें कोई शक नहीं कि उनके जिंदा रह जाने वाले मुख्तार की फौज से जा मिलेंगे, लिहाजा जितना हो सके इनका कत्लेआम करो।

0: क्या लिखा है इसने अबू उसाद?
1: लिखा है वो करकीसिया में हमारा मुंतजर है।
0: वो किस लिए?
1: मदद मांगी है उसने। बज़ाहिर वो जुबैरियों की चाल को समझ गया है।
2: जब तक सुलेमान ने खुद से नहीं बुलाया था हमारे पास उजर था, अब जबकि उसने बुलावा भेज दिया कोई उजर नहीं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए।
0: साहेब क्या पता कि ये भी बिन यजीद की चालों में से एक चाल हो।
2: यह खत सुलेमान की जानिब से हो बैदा, बिन यजीद से क्या वास्ता?
0: खत तो सुलेमान का है मगर ये फिक्र जुबैरियों की है। मुझे यकीन है कि बिन यजीद ने सुलेमान के इस कदर कान भरे हैं कि अब वो मुख्तार से मदद मांगने पर मजबूर हो गया है।
2: हम हद से ज्यादा बदनजर हो गए हो बेटा। बिन यजीद तो चाहता ही है कि शियों में तफरकाबाजी शुरू हो जाए, और तुम कहते हो कि सुलेमान से शियों के इत्तेहाद की बात करेगा। कैसी बातें करते?
0: अगर कूफा शियों से खाली हो गया और सबके सब शामियों से लड़ने चले गए तो फिर बिन यजीद होगा और कूफा, जो कि जुबैरियों की अमाजगा बन जाएगा। उस वक्त शियों को कूफे की गलियों में सर उठाकर चलना भी नसीब नहीं होगा, इस डर से कि वो अली का शिया है।
2: अगर हम सुलेमान की मदद के लिए चले गए और शामियों को मार भगाए तो क्या फिर भी जुबैरी कूफे में हुकूमत कर सकते हैं?
0: अगर सिर्फ हलवा हलवा कहने से मुंह मीठा हो सकता है तो शाम की फौज भी अगर अगर के ख्यालात सजाने से हार जाएगी। मरवानी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आए हैं साहेब, शिया अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकते, पूरे इराक अलब को मिलकर उनका मुकाबला करना होगा।
1: भाइयों, मैंने सुलेमान के इस खत को पढ़कर आप लोगों पर से अपनी बैत उठा ली। जो भी चाहे तवाबीन की फौज से मुलहक हो सकता है।
3: तुम क्या करोगे मुख्तार, करकेसिया जाओगे?
1: खुदा की कसम अगर मुझे जर्रा बराबर भी जीतने की उम्मीद होती तो अपने कदम न रोकता, मगर अफसोस शामियों पर गलबा करना कूफे पर गलबा किए बगैर मुयसर नहीं हो सकता।
0: मुख्तार, अतराफ को खाली मत करो, बिन यजीद तुम्हारे लिए घात लगाए बैठा है।
1: घबराओ मत उबैदा, तवक्कुल करो। अब जबकि सुलेमान ने अपनी अना को खत्म करके

के बड़े झुकाव के साथ हमसे मदद मांगी है तो मुनासिब नहीं होगा कि उसकी मदद ना करें। इसके अलावा हमारा तवाबीन की फौज की मदद करना हिकमत से खाली भी ना होगा। बिन कामिल, तुम और तुम्हारे साथी मेरी जानिब से मामूर हो के तवाबीन की मदद के लिए जाओ। जहां भी देखो कि अब जंग मुश्किल है और वो लोग शामियों से मुकाबला नहीं कर सकते, उन्हें पीछे हटने को कहना ताकि कम से कम खून बहे। साहिब, इस्माइल, अगर आप लोग भी वहां जाना चाहें तो बिन कामिल को मैंने जो कुछ कहा है वो आपके भी जिम्मे है।

0: सिंह कामिल और साहेब मुख्तार के साथियों में से हूँ। मुझे लगता है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि तवाबीन की फौज में फूट डाले।
1: उनकी असल जिम्मेदारी के बारे में कुछ समझ नहीं पाए।
0: ये ग्रोह मुंह नहीं खोलता है अमीर, बड़ी मुश्किल से उनकी मुझसे कोई बात निकलवाई जा सकती है।
1: मतलब क्या ये हो सकता है कि वो लोग सुलेमान और उसके साथियों के दरमियान फूट डालकर उन्हें शामियों की जंग से रोक सकें?
0: क्या कह सकता हूँ अमीर, बईद नहीं है कि उनका इरादा तवाबीन को सुस्त करने का हो। ये हो सकता है कि खुद सुलेमान उनकी बातों में ना आए, मगर सारे तवाबीन तो सुलेमान की तरह नहीं है।
2: ये लीजिए, ये रहा अली जनाब की अहमकाना सियासत का नतीजा। मुख्तार ने एक चाल के जरिए से आपकी पूरी की पूरी बाजी खराब कर दी। तुम यूं निवाले को इतना सर के गिर्द घुमा के क्यों खाना चाहते हो? मुख्तार को कैद कर लो, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इससे पहले कि मक्का की तरह यहाँ भी परिंदा पिंजरे से उड़ जाए, काम तमाम कर दो। खुदा की कसम, सोचोगे तो मखलूब हो जाओगे।
0: अगर वाकई मुख्तार को मारने या उसे कैद करने का इरादा रखते हैं तो ये बेहतरीन मौका है।

0: उबैदा ठीक कह रहा था। आ गए वो लोग।
1: क्या हुआ अम्मा जान?
2: उनके दस्तक देने से लग रहा है कि मुख्तार को शिकार करने के लिए आए हैं।
1: खुदाया रहम फरमा।
3: मुख्तार कहाँ है?
4: आप लोग कौन है, क्या चाहते हैं कि आधी रात को लोगों को तंग कर रहे हैं?
3: बकवास बंद करो वरना तुम्हें खुद पर ही खुराक बना दूंगा। पीछे हटो। मुख्तार कहाँ है?
5: तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है क्या?
1: तुम कुछ मत बोलो साबित।
3: जबान भी चलाना जानते हो शहजादे। मैंने पूछा मुख्तार कहाँ है?
5: मर्दों की तरह बात करो बेगैरत।
6: ए इब्ने मुजारिब, ये बेहतर होता कि अपने उमावी हम मनसब बिन हरीस के अंजाम को अपने लिए सबक बना लेते। इन मनसबों की कोई औकात नहीं होती।
3: मैं वाज़ो नसीहत सुनने नहीं आया हूँ मुख्तार, तुम मेरे कैदी हो।
6: तुम्हारे आका ने जल्दबाजी कर दी। मैं समझ रहा था कि तवाबीन के अंजाम तक सब्र करेगा।
3: अगर मेरे अख्तियार में होता तो जिस दिन तुम कूफे में आए थे उसी दिन तुम्हें जंजीरों में जकड़ देता। तुम्हारे जैसों के होते हुए कूफा कभी खुशहाली नहीं देखेगा। इससे पहले कि तुम्हारी तौहीन करूं, चलो मेरे साथ।

0: मेरे लिए जिंदान उसी तरह है जैसे तुम्हारे लिए इल्म नुजूम है। मैं जिंदान में खुदा से और करीब हो जाता हूं। तुम भी कोशिश करो कि मेरी गैर मौजूदगी में खुदा को पा लो।
1: ये जिंदान मक्का की बैत का नतीजा है। तुम्हें जिंदान की जरूरत है, जाओ मुख्तार, खुदा तुम्हारा मुहाफिज है।
0: मेरे पीछे मौत को लब्बैक मत कहना। मुख्तार के दिल में जो कुछ है उसके लिए आपकी सांसों की जरूरत है।

0: वाह वाह, कूफे के दोनों नए चापलूस हुक्मरान बजाते खुद आए हुए हैं। आप लोगों ने आधी रात को क्यों सहमत की? आपके नौकर काफी हद तक समझदार और फरमाबरदार हैं। हैफ है कि अपनी नमाज शब से महरूम हो गए आप।
1: हम उस घर को करीब से देखने के लिए आए हैं जिसने मुसलमानों के खुलफा के खिलाफ इस कदर साजिशें की हैं। बेशक सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर होता है, समझे?
0: तुम उसी तलहा के नवासे हो कि ने साबित कर दिया कि मुख्तार अली का शिया है।
2: तुम बहुत होशियार हो मुख्तार, बहुत। ये मैं उस वक्त समझा जब तुमने कूफे की अमीरी को ठुकरा दिया। मक्के से फरार खलीफा की परेशानी का सबब बना, लिहाजा मुझे भेजा ताकि तुम्हें मार करूं। इब्ने मुजारिब
3: जी अमीर,
2: इस सोए हुए शेर को एहतराम के साथ उसके नए घर का रास्ता दिखाओ।
3: चलो मेरे साथ।

0: सिपाही शाम का एक हिस्सा ऐनुल वर्दा के शुरू के हिस्से में पड़ाव डाल चुका है और अभी अभी पहुंचे हैं। अभी अच्छी तरह कदम नहीं जमाए हैं उन लोगों ने। उनका सालार शुरा बेल इब्ने जी कला है। शुराबील से एक मंजिल आगे हुसैन इब्ने नुमैर ने पड़ाव डाला है।
1: ये कैसी आराइश लश्कर है, दोनों ने एक जगह पड़ाव क्यों नहीं डाला?
0: मैंने बनी तकलब के लोगों से सुना है कि हुसैन बिन नुमैर और शुराबील के दरमियान इख्तलाफ है। गोया हुसैन का दावा यह है कि वो सबका सालार है और शुराबील कहता है कि हुसैन कौन होता है जो मेरे ऊपर सालार बनाया जाए। उसने इब्ने ज़ियाद को खत लिखा है और उसके जवाब का इंतजार कर रहा है।
2: शायद ये कोई चाल हो।
3: कैसी चाल बिनवाल?
2: शायद वो लोग चाहते हैं कि हमारी फौज को बारी बारी जंग में मसरूफ करें ताकि थका दें। अगर तवाबीन अपनी पूरी फौज के साथ शुराबील से लड़ने चले जाएं और उसे तबाह कर दें तो हुसैन के लश्कर तक पहुंचेंगे, और अगर हुसैन के लश्कर को शिकस्त दे देंगे तो फिर जाकर असल रकीब के मुकाबले पर पहुंचेंगे जो कि इब्ने ज़ियाद है। मगर कब? जब हम खुद कठिन जंग कर चुके होंगे और खासे थक चुके होंगे।
1: इस तरह तो हमें भी अपनी फौज को तीन हिस्सों में बांट लेना चाहिए और उन्हें तीन अलग अलग बारियों में मैदान में भेजें।
4: जनाबे सुनेवान, शुराबील को मेरे हवाले करते हैं।
1: खुदा तुम्हें आज़र दे बंदा है खुदा, इतनी आसानी से तो मैं ये नहीं कर सकता। ये सब के सब लड़ने आए हैं।
2: हमें कुरानदाजी करनी होगी मुसय्यब, जिसका भी नसीब हुआ वो शुराबील से लड़ने जाएगा।

0: दोबारा बड़बड़ाओ। मैंने ठीक से नहीं सुना।
1: अपने उस गुलाम बच्चे से पूछ ले जिसके पास दो कान है और उसने अच्छी तरह सुन लिया है। मैं खेमे के बाहर इंतजार कर रहा हूँ।
0: जबान चलाता है।

0: हाँ सरपंच, कोई बात हुई है क्या?
1: खामोश रहो, कुछ भी हुआ तुम गूंगे रहोगे, समझे? न खांसोगे न छींकोगे,
0: वरना मैं तुम्हारी जान की जमानत नहीं दूंगा।
2: जी अच्छा।
3: काफले को रोको, मैं कहता हूँ काफले को रोको।

0: कहाँ जा रहे हो?
1: खुदा ने चाहा तो शाम जा रहा हूँ।
0: ऊँटों पर क्या लदा हुआ है?
1: कुछ ईरानी खुश मेवे और कुछ कारवा वालों के खाने पीने का सामान।
0: ऊँटों को बिठा दो और इनके सामान की तलाशी लो।
1: आप लोग किसी चीज को ढूंढ रहे हैं पहलवान?
0: इंसान के रूप में एक हैवान है जिसको हम तलाश कर रहे हैं। तीसरे मरजाना का नाम सुना है तुमने?
1: खुदा की पनाह, तुम ऐसा करो, ऊँटों के होलियों को देखो, शायद उसे पहचान लो।
0: किनारे ने क्यों गुप्तगू कर रहे हो?
1: खुदा तुम्हें बख्शे, इब्ने मरजाना को ऊँटों के सामान में छुपाना किसी ऊँट को सामान में छुपाने के बराबर है। नीचे मत करो, आराम सारे।
2: फिर कोई मेरा ख्वाब देख लिया? फिर तुम्हारे उल्टे सीधे ख्यालात ने काम दिखा दिया? ये बार बार की कफी भी तुम्हें मुख्तार के आने से पहले खत्म कर देगी। उठो उठो,

0: आखिर कब तक मैं ऊंट के पेट के नीचे बना रहूंगा? खुदाया, ये ऊंट मेरी तकदीर का हिस्सा कहां से हो गया?
1: ये वही ऊंट था जो तुम्हें बचा गया। अगर उस ऊंट का पेट ना होता तो कूफे के हंगामा आराई करने वाले तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देते।
0: मरकल, इतना ही काफी होता कि हंगामा आराई करने वाले उसे बिठा देते।
1: ठीक है, अच्छा है उनके जाहिल दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि उसे बिठा दे। तुम्हें तो शुक्र गुजार होना चाहिए तुम्हारे दुश्मन कुछ कम अकल अफराद है। अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हो?
0: ये ख्वाब बिला वजह मुझे नजर नहीं आया।
1: इसकी हिकमत भरा हुआ पेट है, तुम कम खाओ। इसके बाद अगर ये ऊंट वाला ख्वाब देखा तो मेरा मुंह तोड़ देना। मोटा आदमी बदहवास हो जाता है और बदहवास आदमी बुरे ख्याल का शिकार।
0: नहीं नहीं,
2: अमीर
0: क्या हो गया कासिद?
2: आप पर कुर्बान जाओ, ये मेरा नसीब है कि एक बुरी खबर लाया हूँ।
1: तो बताओ ना क्या हुआ है?
2: तवाबीन ने शुराबील की उर्दूगाह पर हमला करके सबको मार डाला।
0: हाँ?

0: आपकी पनाह में, आपकी पनाह में अमीर, आप मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए मुझे, मुझे बचा लीजिए।
1: सौदन, जब तुम्हारा दूसरा कान काट दूंगा तब समझोगे कि तुम्हें निपाह नहीं करना चाहिए था और तुम्हें हुसैन से इस तरह अलग नहीं होना चाहिए था।
0: माफ कर दीजिए अमीर, अपनी गलती का इजाला कर दूंगा।
1: इजाला करोगे? क्यों इजाला करोगे मलून? जानते हो क्या किया? एक तो 2000 अफराद के लश्कर का सामान लुटवा चुके, बाढ़ में चाहे अपने लश्कर के तमाम अफराद मरवा चुके हो, वो भी जहन्नुम में चाहे। तुमने अपने इस तहकीर आमेर शिकस्त के साथ वो काम किया है कि अब हाथी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा।
0: एक और मोहलत दे दीजिए अमीर, अगर मैंने गलती का इजाला ना किया तो मुझे जान से मार देना।
2: तुम गलत कर रहे हो, उसे ऐसे तोड़ोगे वो अपने आप को दोबारा बना तो सके।
0: ऐ अमीर, इस नाफरमान गुनाहगार को मेरी जबान पर माफ कर दे। मुझे यकीन है कि ये शिकस्त उसके लिए इबरत होगी कि ये अपने बेजा गुरूर खत्म कर दे। उसे एक फुर्सत दे दे ताकि अपनी खता का इजाला कर सके।
1: खुदा करे ये शिकस्त इसे इंसान बना चुकी हो। उठो, 8000 सिपाही ले जाओ और हुसैन बिन नुमैर के लश्कर में शामिल हो जाओ और उसके हुक्म के मुती रहना। तुम्हारी खैर नहीं अगर अब किसी गलती के मुर्तकिब हुए या गुरूर में कोई गलत काम किया तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला दूंगा।
0: आपका हुक्म सर आंखों पे अमीर।
2: शराबील, अगर मेरी सिफारिश ना होती तो अपनी बकिया आंख और कान भी कटवा देते। खुदा के लिए मेरी तौहीन मत करवा देना।
0: मैं मशकूर हूँ माकल, खुदा की कसम ऐसी जंग लड़ूंगा कि अब तक किसी ने उसकी मिसाल तक न देखी होगी।
1: खबरदार, जो हुसैन से हसद किया तुमने वो तुम सबका सालार है, समझ में आया?
0: जी अमीर, आपको कोई शिकायत नहीं होगी।
3: शराबील को 8000 अफराद के साथ हुसैन इब्ने नुमैर की मदद के लिए भेजा गया है। अब सबको मिला के उनकी तादाद 20000 हो गई है।
4: यानी 1/5, यानी हर तवाब को 5 शामियों से लड़ना होगा।
3: बहुत आसान है जनाब शेख, शराबील से लड़ने के दौरान उनकी तादाद 7 गुना थी।
5: हमारी पिछले एक आध दिनों में हुसैन इब्ने नुमैर से होने वाली जंगों में काफी बरकतें थीं। दुश्मन पर तारी होने वाले खौफ के अलावा ये हुआ कि शामियों की जंग आराइश तौबाला हो गई और वो लोग अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आए।
6: कैसे बिनवाल?
5: अक्ल सलीम ये कहती है कि शराबील इब्ने ज़ी किला इस जिल्लत आमे शिकस्त और इतने सारे नुकसानात के बाद शाम की फौज से ही निकाला जाए। आप लोग जानते हैं कैसे से पैसालार की जेर निगरानी जो फौजी हैं वो कभी उस जैसे शख्स पर भरोसा ना करें, बल्कि मुमकिन है कि उसके हुक्म पर अमल ही ना करें। जब ऐसे शख्स को मैदान में भेज रहे हैं वो भी सरदार की हैसियत से, आखिर इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि उनके पास जरूरी और कारामद कुव्वत और फौज नहीं है।
7: हक बनता था कि शराबील को पत्थर मारे गए हैं। अजीब सी बात है कि इस मजरू आबरू के साथ उसे दोबारा मैदान जंग में भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। या तो ये कि बिनवाल के कहने के मुताबिक मर्दों की कमी हो गई होगी।
6: आप लोगों का मकसद यह है कि हमें भी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना चाहिए, क्या मैंने ठीक समझा बिनवाल?
5: तकरीबन यही मौजू है रुफ़ाहा। हमारी जंग इब्ने नुमैर सकूनी और शराबील इब्ने ज़ी किला के साथ एक तारीख साज जंग होगी। अगर बफ़ज़ले खुदा जंग जीत जाए तो इब्ने ज़ियाद मलून हमारी मुट्ठी में होगा।
4: हम हर लिहाज से दुश्मन से बरतर हैं, हालात भी हमारे हक में हैं, हमारी रूह भी उनसे कई गुना ज्यादा पुरजोश है और हमारा हदफ भी मुकद्दस है। صرف گنتی میں ان کے برابر نہیں ہیں، اور یہ بھی توابین کے ایمان کی طاقت اور ان کے شوق شہادت کے ساتھ ازالے کے قابل ہیں۔ کل رات میں کچھ دیر میدان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ زیادہ تر فوجیوں کا موضوع گفتگو پچھلے ایک آدھ دنوں کے شہدا پر رشک کرنے سے متعلق تھا۔ بہرحال بہتر یہ رہے گا کہ ہم احتیاط کا دامن تھامے رہیں اور ایک مناسب جنگی آرائش کے ساتھ دشمن کی طرف پیش قدمی کریں۔ میں نے ایسی آرائش سوچی ہے جس کے بارے میں ہم مل کر تیاری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشوروں پر غور کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہم پانچ دستوں میں بٹ جائیں گے۔

0: आज मैं हमला शुरू करूंगा।
1: हुसैन नहीं अमीर, तुम तब इंसान बनोगे पिसरे जीकला।
0: बहुत खूब अमीर, अब ठीक है, इजाजत है मैं हमला शुरू करूं?
1: नहीं।
0: नहीं क्यों?
1: इस लश्कर का वारिस है, तुम समझते हो कि सारे फौजी उस शख्स पर जो एक बार उस वाई के साथ भाग गया और अपने लश्कर को इराकियों की तलवारों के हवाले कर दिया एतमाद करेंगे? ये सिपाही इंसान है, चुकंदर के छिलके नहीं। अगर मैं इब्ने ज़ियाद की जगह होता तो तुम्हें एक दुम्बा भी चराने नहीं देता, कुछ आगे 8,000 अफराद का सिपा सलार बनाओ। अपनी जगह पर जाओ और हुक्म मिलने का इंतजार करो, जल्दी। अहमक आदमी, ये समझता है मैंने भी इसकी तरह खड़े का मक्स खाया है। बिन मुखारिक।
0: जी अमीर।
1: उल्टे हाथ से हमला शुरू करो, उल्टे हाथ से हमला शुरू करो।
2: जी अमीर।

0: जब तक ये झंडा बुलंद है मेरा आपके ऊपर गंभीर का विश्वास है, जैसा भी हो सके उनके परसों को नीचे गिरा दो।
1: जी अमीर।

0: तुम्हारी बारी है, परचम क्यों नहीं उठाते?
1: देश खत्म करके अपनी ताकत जमा करते हैं।
2: रुपा रुपा रुपा, हमारे बहुत से साथी मर चुके हैं, हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है, हम इससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
3: हमने तलवार की नयाम तोड़ ली है, हमने कसम खाई है कि दुश्मन को पीछ नहीं दिखाएंगे।
1: पीछे हटना तो एक जंगी आरइश है रूपा, वो दुश्मन को पीठ दिखाना तो नहीं। हमने अब तक वो जंग लड़ी है, किसी ने ऐसी जंग नहीं देखी होगी।
4: जितने भी मार रहे हैं कोई फायदा नहीं हो रहा,
1: ऐसा लग रहा है कि जमीन से शामिल उबल उबल कर निकल रहे हैं। पीछे हट जाओ रूपा, आके अपने लश्कर की मरम्मत करके दोबारा इन शामियों पर हमला कर दे और अपने मरने वालों का इंतकाम ले सके।
2: अगर पीछे न हटे तो अपना मकसद नहीं पा सकेंगे, हमारे साथियों का खून जाया होता रहेगा।
3: सब लोग पीछे हट जाओ।

आओ बच्चों, हम सब जालिमों से इजहार बेजारी करें। सैयदा जैनब ने जो की वो अजादारी करें। बावफा हैं शेह के मकसद से वफादारी करें। यूं इमाम वक्त के आने की तैयारी करें।

एक है चाहने वाला बनना और दूसरे है चहीता बनना। हम उनको बहुत चाहते हैं, हमारी तरफ से कोशिश भी हम करते हैं कि चाहत का इजहार करें। क्या वो भी हमें चाहते हैं? क्या उनकी निगाहों में हमारा कुछ विकार है, कुछ भरम है, कोई स्टेटस है? इसके लिए इंसान को कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए कि करबला में हमारे पास दोनों रुख मौजूद हैं, एक मुहिब्बे हुसैन और दूसरे महबूब हुसैन। कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इमाम बहुत चाहते थे, और जिन लोगों को इमाम चाहते थे उन्हीं लोगों को इमाम ने करबला में जमा किया था। कभी किसी पर निगाह डालकर जमा किया, ज़ुहैर बिन क़ाइन जैसे, किसी से मिलकर इमाम ने जमा किया, वहब कल्बी जैसे, और किसी को ख़त लिखकर इमाम ने बुलाया कि आओ, तुम्हारी इस इनकलाब में ज़रूरत है। जिन लोगों को इमाम चाहते थे, जो लोग महबूब इमाम थे, इमाम ने उनको जमा किया। ये महबूब बनना एक काम है, ये बग़ैर मेहनत के, बग़ैर तलाश के मुमकिन नहीं है। जो हमने प्रूफ किया मुहिब होने को, तो दूसरा मरहला जो हमारे सामने खड़ा होता है कि चलो हम ऐसे बने कि इमाम भी हमें याद करें, इमाम भी हमें चाह दें। इंसान के दिल में ये ख्वाहिश है, हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि इंसान अजीज़ बने लोगों की निगाहों में और चहीता बने। इंसान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग उसे पसंद करें। आजकल जो घरों में बात होती है, फैमिली स्ट्रक्चर की गुफ्तगु होती है, एक कम्युनिटी के यूनिटी की बात होती है, उन सारी चीज़ों में एक ही बात है, वो ये कि लोग एक दूसरे को चाहें। ये वन वे ट्रैफिक ना हो कि चाहत का इजहार होता जाए और दूसरी तरफ से इग्नोर किया जाता रहे, तो फिर वो मोहब्बत कभी फ़ायदा नहीं पहुँचाती। इंसान की ये आरजू है, तमन्ना रही है कि लोग भी उसे चाहें। तो इसीलिए जब उसे सही रास्ता नहीं मिलता चाहत को बढ़ाने का, लोगों के दिलों में जगह बनाने का, तो इंसान कभी गलत रास्ता इख्तियार कर जाता है। कभी माल व दौलत के ज़रिए से, कभी हुकूमत के ज़रिए से, कभी गुरूर के ज़रिए से, कभी तकब्बुर के ज़रिए से, और आज की दुनिया में डरा कर, धमका कर, ज़ुल्म व सितम के ज़रिए से, फसाद के ज़रिए से भी इंसान चाहता है कि लोग भी उसे चाहें। मुझे बॉस कहो, मुझे कमांडर कहो, मुझे लीडर मानो। कभी जुल्म करता है बंदा, डराता है, धमकाता है। अगर सारी दुनिया में किसी को नोबल प्राइज़ मिलनी है तो मुझे मिलनी है, और मेरे अलावा किसी को नहीं मिलेगी। और उसके लिए इंसान सारी दुनिया को परेशान कर देता है। वो चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, लोग उसे इनाम दें, लोग उसे रिवार्ड दें, लोग उसे अवार्ड दें, लेकिन तरीक़ा सही नहीं है। जब गलत तरीके से इंसान अपनाने की कोशिश करता है या मनवाने की कोशिश करता है, तो वो मोहब्बत नफ़रत में बदल जाती है। वो मोहब्बत दरहकीकत इंसान हासिल नहीं कर सकता। अगर कुछ देर के लिए कोई डर कर उसे चाहे भी, तो वो मोहब्बत कभी बाकी रहने वाली मोहब्बत नहीं हो सकती, पायदार मोहब्बत नहीं हो सकती। तो लिहाजा दीन मुबीन इस्लाम ने, खसूसी तौर पर क़ुरान मजीद ने, हमें एक नुस्खा दिया है, एक प्रिस्क्रिप्शन दिया है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में हो, लोग भी तुम्हें चाहें, जिसे हदीस में भी मोमिन के नशानियों में से एक नशानी ये कि अलमोमिनूना या अलफूना व युलफून, मोमिन वो है जो चाहता भी है और लोग भी उसे चाहते हैं। जहाँ चाहत ना हो वहाँ ईमान की बात नहीं होती। ईमान का नतीजा दरहकीकत चाहत है, मोहब्बत है। मोहब्बत ना हो तो फिर ईमान आगे नहीं बढ़ता। ईमान की बुनियाद में, ईमान की फाउंडेशन में मोहब्बत है, चाहत है, लगाव है, दोस्ती है, एक दूसरे से राबेता और कनेक्शन है। तो गलत रास्ता सही रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बताया है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में हो, लोग भी तुम्हें चाहें, तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? सूरह मरियम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तरफ इशारा किया, जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया है, इन्नल्लदीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, वो जो लोग ईमान ले आते हैं, नेक काम अंजाम देते हैं, अमल साले अंजाम देते हैं, परवरदिगार आलम उनकी मोहब्बत लोगों

ना देंगे, कहाँ से मुझे मिलेगा। इसलिए कि बाज़ रिवायतों में है, चौथे इमाम फरमाते हैं, लोग औलाद से ज़्यादा माल को अजीज रखते हैं। या अल्लाह परवरदिगार, हर गरीब और हर मिस्कीन की मदद फरमा, कहीं ऐसा मौका ना आए कि बंदा हाथ फैलाए किसी के सामने। इमाम फरमाते बंदा लोग माल से औलाद से ज़्यादा माल को अजीज रखते हैं, दे तो देंगे लेकिन तुझे छोड़ेंगे नहीं। या अल्लाह, दे तो देंगे तुझे छोड़ेंगे नहीं। नहजुल बलागा में मौला कायनात फरमाते हैं, क्यों औलाद माल से, माल क्यों औलाद से ज़्यादा अजीज़ है? तो इमाम फरमाते हैं, औलाद के मर जाने के बाद नींद आ जाती है, माल के छिन

ही चीज़ें हैं, नज़दीक चीज़ें हैं, बाप और माँ की याद दिलाने वाली चीज़ें, उनको छिपा दिया जाता है बच्चों से ताकि बच्चे ज़्यादा उन चीज़ों को देखकर याद ना करें। तो आलिम दीन कहता, मुझे बताओ तुमने चीज़ों को तो छुपा लिया, मदीने की गली को कहाँ छुपाए हुए हैं, जिस गली में फातिमा की बेहतरामी की गई। वो दर्द इमाम हसन के दिल में है। इमाम हसन कौन, वो जिगर कैसा इमाम हसन का, जब मौलाए कायनात को लाया जा रहा था, इमाम मौलाए कायनात का सर जख्मी था, इमाम हसन के आंखों से आंसू टपके, एक आंसू मौलाए कायनात के चेहरे पर गिरा, आंख खुली तो मौलाए कायनात ने पूछा, बेटा हसन क्या कर रहे हो? कहा, बाबा ये तो अब तुम्हारी क्या हालत हो गई, तुम्हारे सर जख्मी हो गया और तुम्हारे सर से खून बह रहा है। तो एक जुमला मौलाए कायनात ने फरमाया, बेटा हसन रो नहीं, सब्र करो, सब्र करो, अगर तुम खुद रो पड़ोगे तो बेटा बताओ हुसैन को कौन संभाले। बेटा रोना नहीं, अगर तुम खुद रो पड़ोगे तो मेरे हुसैन को कौन संभालेगा। ये दर्द भी इमाम हसन के दिल में है। जिसके दिल में इतना दर्द हो, जिसके दिल में इतनी गुर्बत हो, जो इतना मदलूम इमाम हो, उसको जहर देने की ज़रूरत नहीं थी। इतना गमजदा इमाम हो, उसको क्या ज़रूरत थी कि जहर देते, वो भी ऐसा जहर जो रोम से मंगाया गया था। रिवायतें कहती हैं 7 मरतबा इमाम को जहर दिया गया, जब 6 मरतबा जहर कारगर नहीं हुआ तो जहर को बाहर से मंगवाया गया, और भेजने वाले ने यह जुमला जरूर कहा था, तारीख में सब्त है, इस जहर को इंसानों को न देना और समंदर में इस जहर को न डालना, अगर समंदर में डालोगे तो मछलियां मर जाएंगी। वो जहर इमाम को दिया गया, जब इमाम के बदन में जहर घुलता चला गया तो इमाम के जिगर के टुकड़े तश्त में गिरते चले गए। अल्लाहु अकबर, कितना गरीब है मेरा मौला, कितना मदलूम है मेरा मौला। तश्त में गिरते चले गए टुकड़े, जिगर के टुकड़े तश्त में गिरते चले गए। इमाम हुसैन ने देखा, इमाम हुसैन गिरिया करने लगे, भैया ये क्या हो गया, भैया ये क्या गजब हो गया, भैया ये क्या मुसीबत हम पर आ गई। तो एक मर्तबा हसन ने अपने सर को उठाया, हुसैन के चेहरे की तरफ देखा, अरे मेरे भाई ये मुसीबत कुछ भी नहीं है, जो मुसीबत तुझ पर आने वाली है वो मुसीबत बड़ी है। ला यौमा कयौमे कया अबा अब्दिल्ला, जो दिन तुझ पर आने वाला है हुसैन, वो दिन सबसे बड़ा मुसीबत का दिन होगा। यानी रसूल इस्लाम इस दुनिया से गए, लेकिन आली तसल्ली देने के लिए मौजूद थे, साथ देने के लिए मौजूद थी, थे शहजादी कौनन इस दुनिया से गई, बाबा अली मौजूद थे, अरे बाबा इस दुनिया से जा रहे थे, अरे हम दोनों भाई साथ साथ मौजूद थे, और मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, मेरे साथ है भाई हुसैन तुम हो, लेकिन असरे आशूर का हंगाम होगा, सब शहीद हो जाएंगे, ऐ मेरे भाई हुसैन तुम नजर दौड़ाते रहोगे, कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ, तुम्हारा कोई नहीं होगा। ला यौमा कयौमे कया अबा अब्दिल्ला, कोई आसरा देने वाला ना होगा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा, कोई साथ देने वाला नहीं होगा। उलमाए कराम कहते हैं, जब गुर्बत में इंसान का कोई नहीं होता है तो जरूर भी जरूर उसे माँ याद आती है। अजब नहीं हुसैन ने मदीने का रुख किया हो, अम्मा आपका लाल दश्ते गुर्बत में तन्हा है, अकेला।